0: सोच लिया?
1: मन से मन की डोर बंधी, जब डोर बंधी तो अमर प्रेम मुस्काया। तुम क्या सोच रही?
0: मैं सोच रही थी मन में प्रीतम आन बसे, जब आन बसे तो मन मंदिर कहला।

0: का स्पेशल इनाम।
1: हम इस लड़की से बेजार हो गए, ये लड़की घर से बार बार भाग जाती।
2: अब हमारे पास पैसा नहीं ला, तुम इसको शादी बना के लेके जाओ, ये तुम्हारा स्पेशल इनाम।
1: लंबू।

तक इंतजार करती। कोहरे में खड़ा हुआ पुल तो नजर आ रहा था, लेकिन उसके सिरे नजर नहीं आते थे। कभी लगता उसके दोनों सिरे एक ही तरफ हैं, और कभी लगता इस पुल का कोई सिरा नहीं है। शाम गुजर रही थी और आने वाले की कोई आहट नहीं थी कहीं। नीचे बहता दरिया कह रहा था, आओ मेरी आगोश में आ जाओ, मैं तुम्हारी बदनामी के सारे दाग छुपा लूंगा। मट्टी के शरीर से बहुत खेल चुके, इस खिलौने के रंग अब उतरने लगे हैं।

जॉनी है जिसके जवान भाई के रगों में सांगा ने ट्रक का जहर भर गया। तब से लेकर आज तक इस सांगा से बदला लेने के लिए बदले की आग में चढ़ रहा है।

0: व्यवसाय वाढवायचाय? विश्वास बँकेचे डेली कलेक्शन व्यवसाय कर्ज, रुपये 5 लाखांपर्यंत असुरक्षित कर्ज आणि रुपये 25 लाखांपर्यंत तारणासह कर्ज सुविधा। रोज थोडा हप्ता भरा आणि व्यवसायाला द्या मोठी झेप। अधिक माहितीसाठी संपर्क प्रेमचंद तायडे 9604179861 किंवा गणेश सोमवंशी 8380016508। मोठा व्यवसाय विश्वास बँकेच्या साथीने।
1: ये झूमर का गिरना कोई इत्तेफाक नहीं, जानबूझकर हम पर गिराया गया था।
2: जानबूझकर गिराया गया था, मगर क्यों?
1: हमारी जान लेने के लिए, क्योंकि हमारे दुश्मन को मालूम हो गया है कि तुम मैडम बिलबिलान नहीं हो और मैं पापा खान नहीं हूँ।
2: मगर ये सब कैसे मालूम?
1: यही तो समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे मालूम हुआ। इस राज को तो सिर्फ करमवीर जी और माँ ही जानते हैं। खैर, तुम अपना ख्याल रखना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है।
2: मेरी फिक्र?
1: हाँ।
2: क्यों?
1: अगर तुम्हें कुछ हो गया तो?
2: तो क्या?
1: तो मेरा क्या होगा?

0: नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता छाया, कुछ नहीं हो सकता। मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता जिसे लड़ने से पहले ही आदमी हार जाता है। मैं हार गया हूं छाया।
1: सुदीप।
0: हाँ छाया, लगता है यहां तो सिर्फ दूसरों के सर पे पांव रख के ही आदमी ऊपर चढ़ सकता है। सीधा रास्ता तो सिर्फ वहां जाता है जहां गुहा चला गया। इस शहर के लोग रोने के लिए कंधा नहीं देते, मरने तक इंतजार करते हैं कंधा देने के लिए।
1: मैं तुम्हारे साथ हूं सुदीप, तुम्हारे साथ छोटी सी खोली में भी अपना घर बसा लूंगी।
0: झूठे आदर्श की बात मत करो, चिढ़ होती है मुझे। घर बना लो, कपड़े की लीर का दिया जलाओगी और शाम को आधी सूखी रोटी खिलाकर सोचोगी कि हम लोगों ने घर बना लिया। हाथों में पेट लिए घूमोगी तुम और मैं पेट पे हाथ रखे घूमूंगा। इसे घर कहती हो तुम? नहीं छाया, बहुत देखा है ऐसे पीले चेहरों वाला आदर्श।
1: तुम निराश होगे सुदीप, मुझे विश्वास है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा।
0: हाँ, विश्वास, विश्वास, तुम्हें विश्वास है ना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा? है, एक रास्ता है। हाँ छाया, मैंने भी अपनी सीढ़ी चुन ली है। मोदी।
1: मोदी?
0: तुमसे शादी करना चाहता है ना, कर लो शादी। समझने की कोशिश करो छाया, कितने दिन जिएगा और कितने दिन जी सकता है। हाँ छाया, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ इसके बाद ही हम लोग अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं।
1: छे, किसी की कब्र पे अपना घर बनाऊंगी।

मान के बिना मात्रे होते अक्षरदार, बापत कारी ही ईर्षा माथे बने मकार, ना से नमक हरामी समझो

असली सेठ भी असली नकली माल बनाए, ऊपर असली लेबल अंदर नकली घी और चाय, कैटलीन का बदल के नंबर टेरीलीन बनाए, या बेईमानी तेरा आसरा बोल